0: तुम मात पिता हम बारक तेरे,
1: तुमरी कृपा में सुख कनेरे,
0: कोई न जाने तुमरा अंत,
1: पूजे देव जा भगवंत,
0: सकल समग्री तुमरे सूत्र तारी,
1: तुम दे हो सो आज्ञाकारी,
0: तुमरी गत मित तुम ही।

0: ज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही खोवा
0: मोरस का विश्वास न हो
1: जिसके वास्तव तस आज्ञा राख है
0: प्रभु की आज्ञा माने मत है
1: उसते चौगन करे निहाल
0: नानक साहब सदा दयाल
1: अनक भांत माया के हेत
0: तर पर होवत जानो नेत
1: बिरख की छाया से रंग लावा
0: ओ बिन से ओ मन बसदावे
1: ज्योति से सो चल नहार
0: लपट रहे हो दयांद उदार
1: उठाओ से ओ जो लावे ने
0: ताको हाथ ना आवे कहे
1: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया
0: मिथ्या होमे ममता माया
1: मिथ्या राजोगन धन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रथ अस्थि अशुभ वस्त्रा
0: मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता
1: मिथ्या द्रोह मोह अभिमान
0: मिथ्या आप सुपर गर्द गुमान
1: अस्थिर भक्त साधु की शरण
0: नानक जप जप जीवे हर के चरण
1: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन है
0: मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है
1: मिथ्या नेत्र पेखत पर तरिया रूपाद
0: मिथ्या रसना भोजन स्वाद
1: मिथ्या चरण पर विकार को तावे
0: मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है
1: मिथ्या तने पर पुकारा
0: मिथ्या बासलीन विकारा
1: बिन बूझे मिथ्या सा पै
0: सफल देह नानक हर हर नाम लय
1: बिरथी साकत की यार जा
0: ताज बिना कह हो सूचा
1: बिरथा नाम बिना तन अंध
0: मुखाव दांके दुर्गंध
1: बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाए
0: मेघ बिना जो खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
0: जो कृपन के निरार्थ दाम
1: तन तन तह जान जह कट बसो हर नाम
0: नानक दांके बल बल जाओ
1: रहत अवर कछ अवर कमावत
0: मन ही प्रीत मुखों गण लावत
1: जानन हार प्रभु परवीन
0: बाहर भेख न गाहु बीन
1: अवर उपदेश आप न करै
0: आवत जावत जन्म मरै
1: जिसके अंतर बसे निरंकार
0: जिसकी सीख दरे संसार
1: जो तुम पाने

0: कोट कीने बापांत
1: प्रभते होए ब्रह्म हरि सुमात
0: ताका अंत न जाने कोए
1: आपे आप नानक प्रभ सोए
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास
1: तन होवत आत्म प्रगास
0: कई कोट तत् के बेते
1: तदा निहार है को नेत्रे
0: कई कोट नाम रस पीव है
1: अमर भय सद सद ही जीव है
0: कई कोट नाम गुण गावे
1: आत्म रस सुख सह सुमात।

0: कभु सो घर ग्रंग से
1: कभु नेंद चेंद व्यवहार
0: कभु उपकाश बयाल
1: कभु बेता ब्रह्म विचार
0: नानक आप मिलावन हार
1: कभु नृत करे बापांत
0: कभु सोए रहे दिन रात
1: कभु महाक्रोध विकराल
0: कभु सर्व के हो दरबाल
1: कभु होए बह बड़ राजा
0: कभु पकारी नीच का साजा
1: कभु अप कीर्त मह आवे
0: कभु भला भला कहावे
1: जो प्रभु राखे ते वही रहे
0: गुर प्रसाद नानक सच कह
1: कभु होए पंडित करे बखियान
0: कभु मोहन धारी लावे ध्यान
1: कभु तट तीर्थ इशनान
0: कभु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कभु कीट हस्त पतंग होए जिया
0: अनक जो भरमे भरमिया
1: नाना रूप जो सवांगी दिखावे
0: जो प्रभु भावे तिवे न चावे
1: जो तुस भावे सोई होए
0: नानक दूजा वर न कोए
1: कभु

0: नानक गर्भ गले
1: अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नरक पाती होवत सुवान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: दो होवत बेस्ता का जंत
1: आपस को कर्म पंत कहावे
0: जन्म मरे बोजोन परमावे
1: तन भूमिका जो करे गुमान
0: दो मूर्खंदा ज्ञान
1: हर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नानकी है मुगदा गे सुख पावे
1: धनवंता होय कर गिरवावे
0: ऋण समान कस संग न जावे
1: बहुलत कर मान को ऊपर करे आस
0: पल भीतर दंगा होए विनाश
1: अब ते आप जाने बलवंत
0: किन में होए जाए बसमंत
1: किसे न बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय दिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान
0: दो जन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारे
0: धर्म पावे जंगले बिरधारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर भरे अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगह को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेन जाका मन होए
0: को नानक दांकी निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कछ होए
0: तब इस को सुख नाहीं गोए
1: जब जाने में कछ करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लगने चल नाहीं जीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: जब कर पाते बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो झूठे
1: सहस खटे लख कोट तावे
0: तृप्त न आवे माया बासे बावे
1: अनक भोग बिखिया के करे
0: न जब दावे खब खब मरे
1: बिना संतोख नहीं कऊ राजा
0: दुपन मनोरथ बिरथे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: मुड़ भागी किसे प्राप्त होए
1: कनक रावण आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कनक रावण करने हार
0: इसके हाथ कह विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप आप प्रभ सोए
1: जो कुछ कीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूं कह संग
1: बुझे देखे करे विवेक
0: आपे एक आपे अनेक
1: मरे न बिन से आवे न जाए
0: नानक साथ ही रहा समाए
1: आप उपदेशे समझे आप
0: आपे रजिया सब के साथ
1: आप कीनो अपन विस्तार
0: सब कछु सकाउ करने हार
1: उसते भिन्न कहो कछ होए
0: कांत नंद रे कै सोए
1: अपने चलते आप करने हार
0: कौत करे रंग अपार
1: मन में आ मन अपने माहे
0: नानक कीमत कहन न जाए
1: सत सत सत प्रभ स्वामी
0: गुर प्रसाद किने बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदे किने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अद सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घट घट सुनी सरबन बखियानी
1: पवित्र पवित्र।

0: राष्ट्रपति अविनाशी ब्रह्मन में राख
1: मनुख की तू प्रीत त्याग
0: तिस्ते परे नाही कछ कोए
1: सर्व निरंतर एको सोए
0: आपे बिना आपे दाना
1: गैर गंभीर गहीर सुजाना
0: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
1: कृपा निदान दयाल बुख संद
0: साध तेरे की चरनी पाओ
1: नानक के मन हो नराओ।

0: जाहे।
1: जिस दान को चार कौन छुटता वह
0: तो धन हर सेवा दे पाव है।
1: जिस सुख को नित बाछे मीत
0: तो सुख साधु संग प्रीत।
1: जिस शोभा को करे भली करनी
0: ता सोभा भज हर की सरनी।
1: अनक उपावी रोग न जाए
0: रोग मिटे हर अब खदलाए।
1: हर निदान में हर नाम निदान
0: जप नानक दरगह प्रवान।
1: हर पर बोधो हर के नाए
0: देह दिस धावदा बैठाए।
1: ताको बिघन न लागे कोए
0: जाके हृदय बसे हर सोए।
1: कलता ती ठंडा हर नाओ
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ।
1: अवन से पूर्ण हो आस
0: भक्त भाए आत्म प्रकाश।
1: तित कर जाए बसे अवनासी
0: कहो नानक काटी जम फासी।
1: तत् विचार कहे जन साचा
0: जन मरे सो का चुका चा।
1: आवा गबन मिटे प्रभ सेव
0: आप त्याग सरण गुरुदेव।
1: इयो रतन जन्म का होए उदार
0: हर हर सिमर प्राण आधार।
1: अनको पावना छूटन हारे
0: सिमरत सास्त वेद विचारे।
1: हर की भक्त करो मन लाए
0: मन वंशत नानक बल पाए।
1: संग न चालस तेरे तना
0: तू क्या लपटाव है मूर्ख मना।
1: सोत मीत कटांबर बन

जाय नंदासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जन उपाई। कर कर देख कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई। सो पातशाह शहां पत साहिब नानक रहन रजाई। असा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोई। के वड़ वड़ा डीठा होए कीमत पाए न कहा जाए। कहने वाले तेरे रहे समाए वड़े मेरे साहिबा। गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता के वड़ चीरा रहाओ। सब सुरती मेरे सुरत कमाई सब कीमत मेरे कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाइया सिद्धा पुरखा कियां वड्याइया। तुद बिन सिधी कनै ना पाईया कर्म मिले नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा। जिस तू देह दसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा। असा महला पहला आखां जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख। भूखै खाए चलिया दुख सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचै नाहीं रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई। आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाही। वड्डा न होवे घट न जाए ना हो मरे ना होवे सोग। दिंदा रहे न चुकै भोग गुण एहो होर नाहीं कोई। ना को हुआ ना को होए जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात। जिन दिन कर कै कीती रात खसम बसार है ते कम जात। नानक नावें बाज सनात रा गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास। मेरे मीत गुरदेव मौको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के बड़ भाग बड़े रे जिन हर हर शरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपतास है मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हरस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। रा गुजरी महला पंजवा।

पुरख निरंजन हर अगमाग में पारा, सबत्या में तुझ जी हर सच्चे से जनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दाता रहा, हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत बिचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज बिडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बने अबर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना, जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी, से मुगत पै जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी, जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़ै वो सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खड़ कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावै मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख परंपर करता जी, तुद जेवड़े अवर न कोई, तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू निचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहे सो होई, तुद आपे श्रेष्ठ सब पाई जी, तुद आपे सिज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सबसे का जानोई, असा महला चौथा, तू करता सचियार मेंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी तिहाया, जिसनों कृपा करे तन्ना अमृतन पाया।

बीज कर्मा शरण परे की रखो शर्मा कव्यो बाच बेंती चौपाई पाशे दशमी हमरी करो हादर इच्छा पूर्ण होई चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा।

मोरो परवारा सेवक सिख सभय करतारा। मूर्छा निज करधय करिय सवर्ण को आसंगर है। पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाद मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवर है। जो सदा हमारी पछा श्री अस्तो जो करियो रक्षा। राख ले हो मोरखने हारी साहिब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुमो पुरी चत दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

जछनु पजायो आदि अंत एकै अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी। सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिवकन को शिवगुन सुख दियो, सुतरन को पल मोह बध कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चिट्टी ते कुंचरे अस्थूला, सब पर कृपा दृढ़ कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पढ़ पढ़ की जाने। जब

या पापनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद रियालम, निरंका निर्भका निरलंब, आदो नील नद संभ। ताका मूल उचारत भेदा, जाको बेब न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूल कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा, शिव निरंकार का चिंतन भेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के विसजा प्रथम संसार। एक रूप नूप स्वरूपा, रंग भयो राव कई भूपा, अंड जेरे सित जकिनी, उत्पुज खान बहोर रचदीनी। कहूँ फूल राजा हवै बैठा, कहूँ सिमड़ पहो शंकर कैठा, सगरी सिर दिखाए चम भव, आदि जुगा श्रू श्याम भव, वृक्षा मेरी तुम करो, सिख वाह सिख संघरो, दुष्ट जेते उठो दुपाता। सकल मलेश करो रण काता, जे अज तो तव शरणी पारे, तिनके दुड़ दुगत हवै मरी। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्याई है, ताके काल निपटने आए है। रचा हुए ताही सब काला, दुष्ट अरिष्ट टैं तद काला, कृपा दृष्ट तन जाय निहार हूं, ताके ताव तनक मोह हर हूं। हृदय कर्म

द्वार कौ षाढ़ कै गयो तुहारो द्वार बहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद इको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दों ता गावो हरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाहिया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार्यो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समृत स्वामी सो क्यों मनो बसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहूं हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कन्हेरे

बजे भोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

अभयं जीतं पीत हैं त्रिमान निदान हैं त्रिवर्ग हैं सर्ग हैं नील हैं नाद हैं जे हैं जाद हैं जन्म हैं वर्ण हैं भूत हैं भरण हैं अगंज है भंज है चूज है चंज है हेमीक है रफीक है तंद है बंद है नृभूज है सूज है काल है जाल है लाह है जह अनंत है महंत है अलीक है नरसरीक है नरलंब है संब है गम है जम है पूत है शूत है लोक है शोक है कर्म है परम है जीत है पीत है बाह है गाह है मान है निधान है नेक है फ्रीक है भुजंग प्या छंद नमो सर्वमान्य समस्ति निधान्य नमो देव देव वे अपेक्षी पेय वे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नंगी नाथे नरसंगी परमात्य नमो पान पान नमो मान माने नमो चंद्र चंद्र नमो पान पान नमो गीत गीत नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नाद नमो पान पान नमो बाद बाद दे नंगी नामे समस्ति स्वरूपे पर भंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे संग परम रूपे नमो जोग जुगे संग परम सिद्धे नमो राज राजे संग परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता पेखी परमी भोगी भुगते नमो जोग जुगे सिंह परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर करमे नमो प्रेत प्रे दे विसो धर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो शाह शाह नमो पूह पूपे नमो दान दान नमो मान मान नमो रोग रोगे नमो अस्तंग शनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंतरंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चदानंद सर्वं प्रणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अधो ऊर्ध अर्धं अगं ओघहर्ता परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं शेदि पेदि नामं कामं समस्तोपराजी समस्तस्तहामं तेरा जोर जात्री छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पेह हैं प्रभु हैं जू हैं देस हैं पेस हैं भुजंग प्या छंद हो गादे भादे नंदी स्वरूपे नमो सर्वान्ने समस्त निदहाने नमस्त्वं नरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं गंजे नमस्त्वं पंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेश नमो सर्वपे नमो राज राज नमो सा साज नमो शाह शाह नमो महामाह नमो गीत गीत नमो प्री पीत नमो रोख रोख नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं परम तानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदेशं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे दृपंगे अनंगे नमो जीव जीवनो बीज बीजे खिजे भिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिदंग निवासी चरपट शंत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल पोगे चर राजे टल साजे खल धर्म अलग कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूवाल छंत प्रसाद आदि रूप अनाद मूर्त जौन पुरख पार सर्व मान त्रिमान देव पे बल धार सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल हु जत तत ब्राज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरख उदार मूर्त जौन आदि सेख देश और न पे जाक रूप रेख न राग जतर दत्तर दिशा विशा हुए फैलो अनराग नाम कामहीन पेख तामू न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक दे पेव न जानी जे वेद और कते बहु रूप रंग न जात पास हो जानी कहे जे तात मात न जात जाकर जन मरण विहीन चक्र बकर फिर चित्र जग मानी पुरतीन लोक चौदह के विखा जग जा पीजे जाप आदि नाद मूर्था प्यो सब जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख पारु सर्व विश्व रचयो स्वयं भव गण भंजन हारु कालहीन कला संयुक्त काल पुरख दे धर्म ताम सो परम रहित भूत लख भेस अंग राग नारंग जाकै जात पातन नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुगदाय काम आप रूप अमीक अनुस्त एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर भंजन आदि रूप सूत अंगहीन पांग नात्मिक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व कुप्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तन भेख सर्व शास्त्र न जान नहीं जे रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके निध भक्त नित कोट सिंध पुराण शास्त्र ने आदि वो चित मद भार छंद त प्रसाद गुण गुण उधार मैं मा अपार आसन आप अंग उपमाया नंग अन पहु प्रकाश निधन अनास आजान वाह शान शारा जान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंग कान रंग कालान काल
अनभूत अंग अभा भंग गत मित पार गुण गण उदार मुन गण परनाम निरपै ने।

होए, कूड़ की माल उतरे तन करे है शत होए। सच था पर जानिए जो सच धरे प्यार ना सुन मन रह सिए ता पाए मुख द्वार। सच था पर जानिए जो जुगत जाने जियो धरत काया साध कै विच दे करता बियो। सच था पर जानिए जो सिख सच्ची ले दया जाने जी की किश पुण दान करे।

गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाओ हर कीरत कल युग पद उत्तम हर पाई है सतगुर माझा होम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम परगाजा दर्शन साध मिलो।

वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वा गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुरु वाय गुर

0: ஜனயத்த ராசுத்தன்னாஹி விஷ்யோமேகம் கர்மகமாமுதே சபதர்மராயிதேஜாஹி குர்முகச்சே நிர்மலே குர்கேசவதுசபாயே ஓன்னா மேல பசங்கன லகி ஜீ சல்லன் சத்குரு பாய மனமுக ஜூட்னா உத்தரே ஜீசோ தோமன பாய நானிக குர்முக மேலியன குர்கே அங்கசமாய புரா கரே சோபியா சிஞ்சி
1: ਮਨਮੁਖ ਕਮਲਾ ਰਗੜਾ ਲੁੱਜੈ ਮਨਮੁਖ ਕਮਲਾ ਰਗੜੈ ਲੁੱਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁੱਜੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਿਉਂ ਲੁੱਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਅਨ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਾਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹਰ ਸੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਨਮੁਖ ਮੋਏ ਵਿਕਾਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜੰਮੈ ਬਾਰੋ ਵਾਰ ਜੀਵਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਜੀਵਦੇ ਹਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਉਰ ਧਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਹਣੇ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ ਹਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਜਾਲ ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਸਤ ਅਨੇਕ ਹੈ ਨਵ ਨਿਧ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਧੰਨ ਭਗਵੰਤੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਲੱਦਾ ਹਰ ਪਹਾਲ ਵਡਭਾਗੀ ਗੜ ਮੰਦਰ ਖੋਜਿਆ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਮਨਮੁਖ ਦੈ ਦਿਸ ਫਿਰ ਰਹੇ ਅਤ ਤਿਸ਼ਨਾ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨ ਚੁੱਕਈ ਮਰ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅਤ ਤਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਦੁੱਖ ਗਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਨ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕੱਟੀਐ ਹਉਮੈ ਚੁਕੈ ਗੁਮਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਮਲ ਵਿਗਸਿਆ ਸਭ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਤਨਾਸਰੀ ਤਨਵੰਤੀ ਜਾਣੀਏ ਪਾਈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪੇ ਜੀ ਸੋ ਪਾਈ ਲੈ ਹੁਕਮ ਫਿਰਾਓ ਜੈ ਬੈਸਾ ਵੈ ਬੈਸੈ ਭਾਈ ਜੈ ਭੇਜੈ ਤਹਿ ਜਾਓ ਇਹ ਵਡ ਤਨ ਹੋਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਵਡ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਪਾਈ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਕੈ ਸੰਗ ਰਹਾਉ ਪਹਿਨਣ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਪਤਕੇ ਸਾਧ ਆਪੇ ਖਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਕਿਆ ਸਾ ਲਾਹੀਐ ਪਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੋ ਬਲ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਾਈ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮਨ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਪਾਈ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਫਿਰਾਏ ਸੰਗਤ ਟੋਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਾਈ ਬੈਸਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਥਾਓ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਤਿਨਾ ਮਨਾਏ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਕਮਾਇਆ ਨਾਉ ਤਿਨ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਪਾਈ ਤਿਨ ਕੋ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਓ ਸੇ ਦਾੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ जे गुर चरनी लगन अंदन सेवन गुरे अपना अंदन अंदर हन नानक से मो सोहणे सच्चे दर दे सन मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाए सच्चा शब्द मन वसिया सतगुर माहे समाए सच्ची रासी सच तन उत्तम पदवी पाहि सच सुनै सच मन लैन सच्ची कार कमाहि सच्ची दरगै बैसना सच्चे माहे समाहे नानक बिन सतगुर सच न पाई है मनमुख भूले जाहि बाबीहा प्रयो प्रयो करे जल निद प्रेम प्यार गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार तेह चुकै सहज उपजै चुकै कूक पुकार नानक गुरमुख शांत होए नाम रखो उरतार बाबीहा तू सच चाओ सच्चे सौ लिब लाहे बोलिया तेरा थाए पवै गुरमुख होए अलाए शब्द चीन तिख उतरै मन लै रजाए चारे कुंडा चोक वरसदा बूंद पवै सहज सुभाए जल ही ते सब उपजै जल ही ते सब उपजै बिन जल प्यास न जाए नानक हर जल जिन पिया तिस भूख न लागै आए बाबीहा तू सहज बोल सच्चै शब्द सुभाए सब कुछ तेरे नाल है सतगुर दिया दिखाए आप पछाणे प्रीतम मिले वुठा छिबर लाए झिम झिम अमृत वरसदा तिसना भुख सब जाए कूक पुकार ना हो वई ज्योति ज्योत मिलाए नानक सुख सवन सुहागणी सच्चै नाम समाए धुरों खसम भेजिया सच्चै हुक्म पठाए इंद वरसै दया कर गूढ़ी शैबर लाए बाबी हे तन मन सुख होए जा तत बूंद मोहे पाए अन्न धन बहुता उपजै धरती सोभा पाए अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा कर रजाए हर गुण गावो कामणी सच्चै शब्द समाए भय का सहज शिंगार करे सच रहो लिब लाए नानक नामो मन वसै हर दरगै लए छडाए बाबीहा सगली धरती जे फिरै ऊड़ चढ़ै आकाश सतगुर मिलिया जल पाईऐ चुकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास विण बोलिया सब किश जानदा विण बोलिया सब किश जानदा किसे आगे कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर बुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम न विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिना गुरमुख बसिया मन सोए हर बुठै मन तन पर फड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै झाल चलुंबलै नावड़ा लइयै किस नाओ लइयै परमेश्वरै भन्नण घड़न समरथ हर हट पी तू तू करहै बोलै भली बाण साहेब सदा हदूर है, क्या उच्ची करे पुकार। जिन जगत उपाय हर रंग किया, तिसह विटो कुर्बान। आप छोड़ै ता सो मिलै, सच्चा है विचार। हउमै फिक्का बोलना, बुझ न सका कार। वन तिरन तिर भवन तुझै त्याहींदा, अन दिन सदा विहान। बिन सतगुर किनै न पाया, कर कर थके विचार। नदर करहै जे अपनी, ता आपे लहे सवार। नानक गुरमुख जिनी त्याया, आए से परवान। जोग न भगवी कपड़ी, जोग न मैले वेस। नानक घर बैठिया जोग पाई है, सतगुर कै उपदेश। चारे कुंडा जे फवै, बेद पड़ै जुग चार। नानक साचा पेटै हर मन वसै, पावै मोख द्वार। नानक हुकुम वरतै खसम का, मत भवी फिरै चल चित। मनमुख सों कर दोस्ती, सुख के पुछै मित। गुरमुख सों कर दोस्ती, सतगुर सों लाए चित। जम्मण मरण का मूल कट्टी है, ता सुख हो ही मित। भुलिया आप समझाए सी, जा को नदर करे। नानक नदरी बाहरी, करन पलाह करे। श्लोक महला चौथा, इको ओंकार। सतगुर प्रसाद वडभागिया सुहागणी, जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय। अंतर जोत परगासिया, नानक नाम समाए। वाह वाह सतगुर पुरख है, जिन स जाता सोए। जित मिलिया तिख उतरै, तन मन सी तल होए। वाह वाह सतगुर सतपुरख है, जिसनु समत सब कोए। वाह वाह सतगुर निर्वैर है, जिस निंदा उस्तत तल होए। वाह वाह सतगुर सुजान है, जिस अंतर ब्रह्म विचार। वाह वाह सतगुर निरंकार है, जिस अंत न पारा वार। वाह वाह सतगुरु है, जे सच दृढ़ाए सोए। नानक सतगुर वाह वाह, जिस ते नाम प्राप्त होए। हर प्रभ सच्चा सोहेला, गुरमुख नाम गोविंद। अन दिन नाम सलाहना, हर जपया मन आनंद। बडभागी हर पाया, पूर्ण परमानंद। जन नानक नाम सलाहेया, बोहड़ना मन तन भंग। मूह प्रिया सो नेह, क्यों सज्जन मिलै प्यारिया। हो टूटेंदी तिन सज्जन सच सवारिया। सतगुर मेंढा मित है, जे मिला ता एह मन वारिया। दिंदा मूह फिर दस, हर सज्जन सिरजन हारिया। नानक हो फिर भाली अपना, सतगुर नाल दिखालिया। हों खड़ी निहाली पंध, मत मूह सज्जन आवे। को आण मिलावे अज, मैं फिर मेल मिलावे।

जिनको प्रेम प्यार तो आपे लाया कर्म कर, नानक ले हो मिलाए। मैं जाचक दीजै नाम हर, गुरमुख हसै गुरमुख रोवै, जे गुरमुख करे साई भगत होवै। गुरमुख होवै सो करे विचार, गुरमुख नानक पावै पार। जिन्ना अंदर नाम निधान है, गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले, तित सच्चे दरबार। तिन बहिंदियां उठदियां कदे ना विसरे, जे आप बख्शे करतार। नानक गुरमुख मिले ना बिछड़े, जे मिले सिरजनहार। गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी सुखसार, नदर करे जिस अपनी तिस लाए हित प्यार। सतगुर की सेवै लग्या पौजल तरै संसार, मन चिंदिया फल पाए सी अंतर बबेक विचार। नानक सतगुर मिले है प्रभ पाई है, सब दुख निवारण हार। मनमुख सेवा जो करे दूजै पाए चित लाए, पुत कलत कुटुंब है माया मोह बधाए। दरगह लेखा मंगिया कोई अंत ना सकी छड़ाए, बिन नावै सब दुख है दुखदाई मोह माए। नानक गुरमुख नदरी आया, मोह माया बिछड़ सब जाए। गुरमुख हुक्म मन्ने सह केरा, हुक्मे ही सुख पाए। हुक्मो सेवे हुक्म अरादे, हुक्मे समय समाए। हुक्म वर्त नेम सुज संजम, मन चिंदिया फल पाए। सदा सुहागण जे हुक्म है बुझै, सतगुर सेवै लिवलाए। नानक कृपा करे जनी उपर, तिना हुक्मे लहे मिलाए। मनमुख हुक्म न बूझे बपड़ी, नित हो मैं कर्म कमाए। बरत नेम सो संजम पूजा, पाखंड भरम न जाए। अंतरों कसुद्ध माया मो बेधे, ज्यो हस्ती शार उड़ाए। जिन उपाए तिसै न चेतै, बिन चेते क्यों सुख पाए। नानक परपंच किया तुर करतै, पूर्व लिखिया कमाए। गुरमुख प्रतीत पही मन मानिया, अंदन सेवा करत समाए। अंतर सतगुर गुरु सब पूजे, सतगुर का दर्श देखै सब आए। मनिए सतगुर परम बिचारी, जित मिलै तिसना भुख सब जाए। हो सदा सदा बलिहारी गुर अपने, जो प्रभ सच्चा देह मिलाए। नानक कर्म पाया तन सच्चा, जो गुर चरनी लगे आए। जिन प्रिया सोहने हे से सज्जन मैं नाल, अंतर बाहर हों फिरा पी हिरदय रखा संभाल। जिन्ना एक मन एक जित आया, सतगुर सोचित लाए। तिनकी दुख भुख हो मैं वड्डा, रोग गया निर्दोख पहे लिबलाए। गुण गावै गुण उच्चरै, गुण मह सवै समाए। नान गुर पूरे ते पाया, सहज मिलिया प्रभ आए। मनमुख माया मोह है, नाम न लगै प्यार। कूड़ कमावै कूड़ संग्रहै, कूड़ करै आहार। बिख माया तन संच मरै, अंत होए सब शार। कर्म धर्म सुज संजम करहै, अंतर लोभ विकार। नानक मनमुख जे कमावै, सो थाहि ना पवै।
ਦਰਗਹਿ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸਭਨਾ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਭਲਾ ਪਾਈ ਜਿਤ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਰਾਗੈ ਨਾਦੈ ਬਹਰਾ ਇੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਤਿੰਨਾ ਰਾਸ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂ ਤਸੈ ਦੀ ਰਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕਹਾਈ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲੋ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਤਿਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਿਖਾਏ ਅੰਦਰ ਤਿਸ਼ਨਾ ਅੱਗ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਲਪਟਾਈ ਅਨ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਵੈ ਚਿੰਤਾ ਬੱਧਾ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰ ਨਾ ਚੁਕਈ ਹੋਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਉਬਰੈ ਨਾਨਕ ਲੈ ਛਡਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹਰ ਧਿਆਈ ਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਸਤਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਮ ਦੇ ਹਰ ਮੇਲੇ ਗੁਰ ਮੇਲਾਈ ਇਹ ਪਉਜਲ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਬੋਇਥ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ ਤੁਰਮਸਤਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਆਏ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰਿਅਨ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਲਏ ਛਡਾਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੋ ਸ਼ਾਬਾਸ ਹੈ ਹਰ ਤੁੱਠਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿੜਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮ ਚੁਕਾਇਆ ਰਾਮ

गुरमति जम जो हे न सक सच्चै नाय समाया सब आपे आप वरत करता जो भावै सो नाही लाया जन नानक नाउ लहे ता जीवै बिन नावै खिन मर जाया मन अंतर हौ मैं रोग ब्रह्म भूले हौ मैं साकत दुर्जना नानक रोग गवाए मेरे सतगुर साधु सज्जना।

चोले हर जैसा पुरख न लभई, सब देखिया जगत में टोले, गुर सतगुर नाम दिड़ाइया, मन अंत न काहूं डोले। जन नानक हर का दास है,

नानक ज्यों मथन माधाणिया त्यों मथे ध्रम राए नाम ते आयन साजना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवै कीतो भवन पुनीत। खुबड़ी कुथाए मिठी गलन कुमंतरिया नानक से ही उबरे जिन्ना भाग मथाहे सुतड़े सुखी सवाना जो रत्ते से अपने प्रेम बशोहा तनी सौ अठे पैर लवन सुतड़े असंख माया झूठी कारने नानक से जागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख फुलने मुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादेया नानक मन तन फब पतद उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिसे उदारे नानका सो सिमरे सिर जनहार।

धन लावे, बैरारी घर नाटी तरी, गवरी गावे आसावरी, ते पाछे सिंधवी अलापी, श्री राग सिंह पंचो थापी, सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर, अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर, खष्ट मेघ राग वह गावे, पंचो संग बरंगन लावे, सोरठ गोंड मलारी तुनी, पुन गावे आसा गुन गुनी, उच्चे सुर सूहो पुन कीनी, मेघ राग सिंह पंचो चीनी, बैरा तर गज तर के

दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख सतनाम श्री वाहिगुरु जी सलोक दया करण दुख हरण उच्चरण नाम कीर्तन है दयाल।

पूरे से अगह अखिय दरगह पावह साची मनो जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर त्रिजै सिर दीजै कान ना कीजै।

कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तू उचे ते उचा सगल समाग्री तुम रह सुतर तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास उई सहाय अर्जन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरे।

दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। जैत श्री महला चौथा।